0: ठीक 6 वाजता आपण ऐकू शकता दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणाऱ्या हिंदी बातम्या.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं. दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे. न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया. भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है. किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है. न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा.
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी.
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है. न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है. साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं. यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे.
2: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल.
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे. इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही. गृहमंत्री कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए. स्वदेशी स्टील फिगरेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे. समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित

उद्घाटित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रिकामे पोटी घ्यायला सांगतो की त्याच्यानंतर 15-20 मिनिटांनी ब्रश करा तुम्ही, जेणेकरून औषधाला ऍब्झॉर्प्शनला काही प्रॉब्लेम येणार नाही.
1: त्यापूर्वी कोमल कुंभार लिखित आपुलकी या घरात ही कौटुंबिक श्रुतिका अवश्य ऐका. मंगळवारी 14 जुलै रोजी दुपारी 12 वाजता वनिता मंडळ कार्यक्रमात न्यूज ऑन AIR ऍप, वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि अस्मिता वाहिनीसह महाराष्ट्रातील सर्व केंद्रांवर वनिता मंडळ.
2: आपण ऐकणार
3: त्यानंतर
2: 8:15 इंग्रजी बातम्या आणि 8:30 पुणे केंद्रावरून प्रसारित होणाऱ्या मराठी बातम्या आपण ऐकू शकता.
3: मिलकर के बचाए,
4: चल है तो हम है. आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं. इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता. भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की. कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा. गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए. फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से. और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई. इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया. न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया. औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई. इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली. इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया. प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कर समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा. उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है. मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड.
5: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है.
7: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है. मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ. यह हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है.
5: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा. प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
7: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये. और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं.

0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
1: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरि को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
2: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है और आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जो स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से

0: अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वीं मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना

0: Kashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 8:40 हो रहे हैं. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो. सुबह हो चुकी है, 11 जुलाई का दिन है. सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल, सीधा प्रसारण आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी के डीआरएम पर भी सुन सकते हो. मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आपकी आरजे मृन्मयी मनजा. दिन के 11 बजे तक का रहेगा साथ, हमेशा की तरह सबसे पहले मस्त मुंबई 10 बजे तक और फिर नमस्ते भारत. और आज है शनिवार का दिन.

सुबह सुबह जब बारिश नहीं होती है तो भी थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए गाने हमेशा साथ दे जाते हैं, नहीं तो खास तौर पे ये प्यारी सी मीठी सी आवाज महालक्ष्मी अय्यर की। आज वैसे भी 50वीं सालगिरह है उनकी, यानी कि उनका बर्थडे है, तो जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। आप सभी के मैसेजेस आए हुए हैं हमारे पास 8657661071 पर 8657661071। बिल्कुल हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस गाने के साथ जब सच में वीकेंड के समय ज़रा हल्के हल्के बातें करने का मन कर रहा हो तो भाई झूम बराबर झूम, लेकिन प्यार के साथ, म्यूजिक के साथ। और देखो ना कितना खूबसूरत वैसे भी लिखा हुआ है, आ नींद का सौदा करें, एक ख्वाब दें, एक ख्वाब लें। कितने दिनों से ये आसमां सोया नहीं है, इसको सुला दे। चलिए हल्के हल्के बातों के साथ आगे बढ़ते हुए एक और प्यारा सा गाना सुनाती हूँ। सुन रहे हो इस वक्त 107.1 FM रेनबो मुंबई। और क्योंकि आज शनिवार है, दिल का फसाना जरूर सुनाऊंगी।

0: जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।
1: नौ बजने वाले कुछ ही मिनटों में, लेकिन सुबह की शुरुआत सलाम नमस्ते के साथ हम कर रहे हैं। भाई कैसे हैं ये तो बताना पड़ेगा ना। 865-6-1-0-7-1 FM रेनबो मुंबई का व्हाट्सएप नंबर। सलाम नमस्ते का ये गाना सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर जयदीप साहनी ने लिखा है, विशाल शेखर का म्यूजिक। भाई जहाँ भी चलेंगे संग संग अपना आसमां लेके चलना अलग ही हुनर होता है कि नहीं। लोग कहते हैं कि साये किस तरह साथ रहेंगे, लेकिन ये भी एक अलग सा पोएटिक सा अंदाज है ये देखने का कि आसमां और चांद सितारे, मतलब दिन हो या रात, वैसे तो साथ साथ चलते ही रहते हैं, हमें पता हो कि नहीं। सुविधा ने वैसे लिखा हुआ है कि महालक्ष्मी अय्यर को हैप्पी वाला बर्थडे, तो सुर फिल्म का एक गाना तो चाहिए ही। सुपर स्लो शुरुआत जो हुई है, व्हाट्सएप लवर्स के ग्रुप फिरोज, बिल्कुल आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस और पसंद कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं एक और गाने की तरफ।

0: नीलन निकी का ये गाना सुन रहे थे इस वक्त सोनू निगम, महालक्ष्मी अय्यर, क्लिंटन डोमिनिक सरेजो और साथ ही साथ सलीम सुलेमान। तो सुबह की शुरुआत मस्त मुंबई में कर रहे हो अपनी आरजे मृणमयी मनाजा के साथ।
1: ये है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मुंबई का सबसे पहला एफएम चैनल।
0: और मुंबई का हाल वैसे कभी कभी जब रास्ते में आपको समंदर साफ साफ दिखाई दे जाए, वैसे भी आज सुबह आते हुए जैसे मरीन ड्राइव पे लोग टहलते हुए थोड़े से कम धुंधले दिखाई दे रहे हों, या फिर सीलिंग पे आपको दूसरी तरफ की बिल्डिंग्स थोड़ी सी दिखाई दे रही हो, तो समझ आ जाता है। जैसे आज यहाँ पे भी स्टूडियो में बात हो रही थी कि बारिश तो मतलब आई और फिर गई, मतलब ऐसा होता नहीं है, जब आती है तो कितनी दिक्कत होती है, वो भी तो है। वैसे मौसम विभाग का यही कहना है कि सिटी और सबर्ब्स में एक आध तो जो बारिश की बौछारें हल्की फुल्की हो सकती हैं, लेकिन ये जो आसमान की बातें कर रहे हैं हम, बिल्कुल थोड़े से बादल वैसे ही छाए रहेंगे। तो सुबह 8 बजे अगले 24 घंटे के लिए 33 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच रहोगे मेरी जान। और इस वक्त खुशी का माहौल है जो मैं थोड़ी ही देर में बदल दूंगी क्योंकि कहानी आपको पता ही है, शनिवार के दिन संघर्ष की गाथा होती है। तो किसी की जिंदगी हम नहीं सुनना चाहते वैसे, है ना, जब इतनी तड़प हो, इतना संघर्ष हो, इतना दुख दर्द हो, क्योंकि अपने जीवन में तो भरपूर भरा होता ही है। लेकिन फिर भी कभी कभी दूसरों के दर्द को समझकर, जिस तरह हम दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं, कभी कभी दूसरों के गम में भी अपना गम पा लेते हैं, देख लेते हैं। और फिर मज़ा भी आता है जब वो आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छा भी होता है उनके साथ। तो कौन सी कहानी है, सोचो सोचो, बताती हूँ थोड़ी ही देर में।

अक्सर ऐसा होता है कि जब अक्सर का गाना सुना हो के और सुनिधि चौहान की आवाज में और समीर के लिरिक्स हिमेश रेशमिया का म्यूजिक, तो इंसान सच में खो ही जाता है ना। लेकिन खो तो सकते हो नहीं, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है, 11 जुलाई वैसे विश्व जनसंख्या दिवस। यानी आज की खास बात बतानी तो पड़ती है ना, नहीं तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्त किस लिए हूँ मैं, रही आपकी आरजे मृणमयी मनाजा। तो ये जो 2026 यानी कि ये वाला साल है, इसका ऑफिशियल थीम पता है क्या है? रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर, यानी कि युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं को साकार करना। जैसे कि हम बात करते हैं आबादी की, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी है पूरी दुनिया में, यानी कि हिंदुस्तान की, हमारे प्यारे से इंडिया, हमारे भारत की। लेकिन इतने सारे युवा होने के साथ साथ, जितनी हमारी युवा शक्ति है उसी के साथ साथ समस्याएं भी हैं, चुनौतियां भी हैं, जिनका सामना हम सबको मिलकर करना पड़ता है। अब छोटी छोटी बातें ही देख लो, जैसे अब युवा शक्ति है तो बहुत सारे लोगों को काम पर जाना पड़ता है, जिम्मेदारियां संभालनी होती हैं। स्पोर्ट्स में हम कितना अच्छा कर रहे हैं आजकल, है ना, देख रहे हो। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की इसके जो है आप परिणाम देखते हो। लेकिन साथ ही साथ एक अलग तरह का भी चीज़, मैंने अभी भी एक फिल्म देखी थी वैसे, कि जब युवा जाते हैं ऑफिस और उनके माता पिता घर पर अकेले होते हैं तो भी वो कितना फिक्र करते हैं। राखी गुलजार, अभी गुलजार साहब की बात कर रहे थे, तो इतनी हमारी प्यारी अभिनेत्री, आपको पता ही होगा, वो थी उस फिल्म में। और वो ऐसी पता है कहानी थी जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, अकेले हैं या फिर उनकी सेहत और स्वास्थ्य की जो हालत है उसको लेके कॉरपोरेट्स में भी कुछ ऐसे क्रैश जैसा, जैसे बच्चों के लिए होता है, बड़ों के लिए कोई सोचता नहीं है, पर वैसा उन्होंने किया था, बड़ा ही मज़ेदार सा था। चले एक और गाने की तरफ बढ़ते हैं और फिर आपको सुनाती हूँ एक प्यारी सी बच्ची की कहानी। वैसे 9:10 हो रहे, लेकिन हमारी ये जो छोटी सी बच्ची थी इसकी कहानी 2.5 साल से शुरू होती है और उसके बाद किसी ब्लॉकबस्टर से कम है नहीं उनकी कहानी।

दिल का फसाना दिल से ही सुनाते हैं, और जैसे कि आपने कहा कि किसी और के गम में भी खुद को पाते हैं, तो दुनिया में इतने सारे गम हैं। उल्लासनगर से ये प्यारा सा मैसेज हमारे पास आया है, तो अपना गम कभी कभी भूल भी जाते हैं। कल्पना राजू, इन्होंने ये मैसेज भेजा हुआ है, और सभी के मैं पढ़ रही हूँ वैसे, लेकिन कहानी की तरफ तो बढ़ना पड़ेगा ना। तो ये जो छोटी सी बच्ची है, इसकी जो कहानी आजकल जैसे फिल्में आती हैं, आप देख ही रहे होंगे, जो सबसे ज़्यादा मतलब पूरे विश्व में भी लोग देख रहे हैं, और आपने भी देखी होगी, तो वापस से वो ट्रेंड आया है जहां आप किसी के दुख दर्द देख रहे हैं, फिर से नैना भर रहे हैं, है ना। ज़मीन को लेकर कितना कुछ हो जाता है, कभी कभी हम सच में सोच भी नहीं सकते। और ठीक इसी तरह एक बॉलीवुड फिल्म की ही दुख भरी दास्तां की तरह इनकी कहानी है। 2.5 साल की ये मासूम सी बच्ची, सोचो क्या ही सोचा होगा उसने अपनी ज़िंदगी में, कि बस अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहेगी, है ना। पर उनके जो माँ बाप हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है बड़ी ही बहरहमी से, वो भी ज़मीन को लेकर। 8-9 साल का बड़ा भाई, और वो अभी एक लौता सहारा। लेकिन जब वो कुछ 4-5 साल की हुई, तो उनके रिश्तेदारों ने उनके भाई को भी मार डाला। तो अब बेचारी बच्ची करे तो क्या करे, उन्हीं रिश्तेदारों के यहाँ बेसहारा वहीं रही, अब कहाँ जाएंगी। और उन्होंने, जाहिर सी बात है, जब रिश्ते ऐसे हों तो कोई प्यार से अडॉप्ट तो नहीं करेगा, प्यार से पालेगा तो नहीं, तो नौकरानी बन के उनको रखा था। मतलब एक खाने के लिए, सोचो बच्चों के लिए बेसिक जो मानव अधिकार होता है वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में यहाँ वो फंसी हुई थी, पर वो बच्ची आगे जाकर कौन बनी, बताती हूँ, मेरे साथ बने रहो। 107.1 FM रेनबो मुंबई पर।

गैंगस्टर फिल्म का ये गाना जेम्स, और लिरिक्स है मयूर, म्यूजिक प्रीतम का। कई बार बहुत कुछ अधूरा सा रह जाता है, और जरूरी नहीं है कि हर बार इश्क मोहब्बत अधूरा रह जाए। परिवार के साथ जो रिश्ता होता है वो भी बहुत गहरा होता है। मैं आपको कहानी सुना रही थी क्योंकि आज शनिवार और मस्त मुंबई में दिल का फसाना लेकर आते हैं, और दिल ही की बात। दिल हमेशा मुस्कुराता तो नहीं है, कभी कभी रोता भी है, कभी कभी टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, गम बहुत बढ़ जाता है। अपनी परेशानियाँ छोटी लगने लगती हैं जब किसी कहानी में यूं खो जाते हैं कि भीगी पलकें बस किसी और की भीगी पलकों से यूं मिला लें। 2.5 साल की बच्ची, एकदम फिल्मी कहानी, सच नहीं लगता पर सच होता है, सच्ची कहानी। जब उनके माँ बाप की हत्या कर दी गई और भाई को भी मार दिया गया, तो अकेली मासूम सी बच्ची अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे कि पढ़ाई जो तो भूल ही जाओ, खाने की बात कर रहे हैं, वहाँ खाना नसीब करने के लिए ही काम करना पड़ता था, तो रिश्तेदारों के पास पड़ी थी। और ये कोई रिवेंज सागा हो भी नहीं पा रहा था क्योंकि ये उस ज़माने की बात है, और साधन भी तो नहीं होता ना किसी के पास, अगर भी कोई बदला लेना भी चाहे। हर कहानी भी वैसे उतनी भी फिल्मी नहीं होती कि चलो कुछ होगा इसका। ऐसे अंधकार भरी जिंदगी में उनका एकमात्र सहारा था रेडियो। रेडियो पे गाने सुनती थी। आज भी देखोगे आप, कई सारे लोग कहते हैं कि मुंबई जैसे शहर में इतने सारे रेडियो चैनल्स एफएम की क्या ज़रूरत है, आजकल सुनता ही कौन है। मिलेंगे आपको ऐसे भी लोग जिनको कुछ अता पता नहीं होता दुनिया के बारे में। क्या है कि स्ट्रीम करना, हर किसी के पास इंटरनेट है, हर किसी के पास फ़ोन है, कह देना बड़ा आसान होता है। पर ये उस समय की कहानी है जहाँ कोई इतना अकेला

और उस वक्त जब आप अपने दर्द को किसी गाने में सुनते हो ना, तो थोड़ी सी अधूरी सी कहानी हल्की सी पूरी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई और भी महसूस कर सकता है ना। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मृण्मयी मनजा।

गानों का साथ मिलता है तो सच, कोई भी दर्द हो, कितनी भी अधूरी कहानी क्यों ना हो, हल्का सा पूरा हो ही जाता है, क्योंकि गाने के साथ साथ, म्यूजिक के साथ साथ हम अपने दर्द को, आंसुओं को पी जाते हैं और फिर मुस्कुराना सीख जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ और ये बनना चाहती थी, जाहिर सी बात है गानों के साथ इश्क मोहब्बत हो जाए तो ये गायिका बनना चाहती थी। तो हमारी प्यारी सी बच्ची बड़ी हो जाती है और फिर पार्श्व गायिका बनना चाहती हैं, प्लेबैक सिंगर, और इस अंधेरे भरी जिंदगी से भागने की फिराक में, मतलब चाहता तो इंसान यही है, पर जब बच्चे छोटे होते हैं और उन्हें कोई सहायता नहीं प्राप्त होती है तो ये संभव इतना, मतलब आसानी से तो नहीं हो पाता, पर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए, आपको पता है पुराने जमाने की किसी की भी बात करें तो कई बार उनकी कहानी भागकर मुंबई आने पर ही शुरू होती है, और इसीलिए शायद हमारे शहर को सपनों का शहर भी कहा जाता है, और इसी प्रकार भागकर वो यहाँ पहुंच भी गई, और फिर क्या हुआ? तब तक बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद का सफर सुनाती हूँ।

आवारापन, मुस्तफा की आवाज, सईद कादरी ने लिखा है। सारा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी।

मैं आपको सुना रही थी एक कहानी प्यारी सी छोटी सी बच्ची के बारे में जो कि बहुत सारे दुख का सामना करते हुए फिर बड़ी होती है। और अब अगर मैं आपको बताऊं कि प्लेबैक सिंगर बनने की ख्वाहिश के साथ जब वो मुंबई आई और बाद भी एक पल जिंदगी में उन्होंने ऐसा भी कहा कि मतलब इतने सारे फूल है दुनिया में, अब क्या मुझे देख के गोभी का फूल समझा है क्या कि लेके घर पे भाजी बना दोगे। सोचो, दर्द अक्सर मुस्कुराहट में बदल जाती है जब इंसान उसको उस तरह चैनलाइज करता है, तो ऐसा भी होता है। तो ये जो हमारी बच्ची थी, ये गायिका बनना चाहती थी, ये आई भी मुंबई शहर और

बहुत ही मुश्किलों के बाद वो ऑडिशन तक पहुंची भी और नौशाद जी ने उन्हें मौका भी दिया। अब आप सोचोगे कि हैप्पी एंडिंग हो गई भाई, इतनी सारी फिल्मों में गाने का मौका मिल गया, सब कुछ सही चल रहा है, इतने दुख भरी दास्तां के बाद ये जो दिल का फसाना है अब सब सही चलेगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिंदगी, असल जिंदगी जो है, उतार चढ़ाव के साथ चलती रहती है। आगे क्या हुआ बताती हूँ थोड़ी देर में, सुनते रहो मस्त मुंबई अपनी आरजे मृणमयी मनाजा के साथ।

9:45 से आगे बढ़ते हुए जिया धड़क धड़क जा ही रहा है। कलयुग का ये गाना राहत फतेह अली खान। और कहानी को आगे बढ़ाते हुए, जिंदगी हमेशा दुख भरी भी तो नहीं होती, कभी कभी मुस्कुराने का हल्का सा मौका खींच के कहीं से चुरा के ले ही आते हैं। तो उतार चढ़ाव की तरफ बढ़ने से पहले क्या हुआ, तो ये जो लड़की की कहानी मैं आपको बता रही थी, इतने दर्दनाक ब्लॉकबस्टर फिल्मी दुखों और गम को झेलकर आगे बढ़ने के बाद जब जिंदगी में कुछ बचा ही ना हो हारने के लिए, तो शायद डर भी नहीं लगता। तो इतनी सारी चुनौतियों का सामना करने के बाद उनको ब्रेक मिल ही गया। आखिरकार 1947 की फिल्म दर्द, अब फिल्म का नाम भी देखो, दर्द, फिर से नैना भरे। तो दर्द में मौका मिला, नौशाद जी ने उनका टैलेंट समझा, पहचाना और जो गाना था वो था अफसाना लिख रही हूँ। उसके बाद 1950 में जाके बाबुल में उनकी कहानी फिर से थोड़ी सी खुशनुमा हुई। बीच में क्या हुआ, हुआ यूं कि एक सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर तो वो बनी, क्योंकि ये जो गाना था उनका पहला डेब्यू वाला काफ़ी ब्लॉकबस्टर रहा और मतलब बहुत लोगों ने पसंद किया। लेकिन अब जब कोई नया होता है, हम बोलते हैं कोई पीछे नहीं है खानदान में, देखो तो कितना मतलब मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि एक फैमिली सपोर्ट जिसकी बात करते हैं, तो इस बच्चे के पास तो कुछ भी नहीं था। पूरी दुनिया अकेले अकेले वो देख रही थी, समझ रही थी, संभाल रही थी। ऊपर से शिक्षा, जैसे कि इतने उम्र होने के बाद भी हमारे हिंदी फिल्म जगत को अपने इतने सारे साल देने के बावजूद वो वही कहती थी कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं क्या जानती हूँ। कितनी बारीकी से मुस्कुराते हुए अपने सारे गमों को पी जाती थी। पर हुआ यूं कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स में काफ़ी जो है फंस गई। तो कॉन्ट्रैक्ट्स के चक्कर में नौशाद जी ने उन्हें एक उपदेश दिया कि क्यों ना एक्टिंग की तरफ बढ़ के देखो।

NH10 का ये गाना सुन रहे हो 107.1 FM रेनबो मुंबई पर. कनिका कपूर, दीपांशु पंडित, कुमार के लिरिक्स हैं संजीव दर्शन साथ. और देखो ना, हम 1947 से लेकर NH10 के टाइमलाइन तक भी आ जाएं तो कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती है ना. कितना मुश्किल होता है, और इन्हीं मुश्किलों का सामना करते हुए हमारी उमा, जिनकी कहानी मैं आपको बता रही थी, बहुत सारी फिल्मों में उसके बाद वो आई. आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा. देखा जाए तो हमारी सबसे पहली महिला कॉमेडियन के रूप में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा. कॉमेडियन, बिल्कुल हास्य कलाकार, जिनके ज़िंदगी में इतना दर्द होता है ना, पता नहीं कहाँ से वो उस दर्द को इस तरह कला में परिदर्शित करते हैं, बदलते हैं, रूपांतरित करते हैं. जो मिला उन्हें उसका उन्होंने इतना अच्छा उसे संभाला, अच्छे तरीके से बॉलीवुड में कॉमेडी क्वीन बन गई. कहाँ गायिका बनने आई थी और जिंदगी ने किस तरफ उन्हें मोड़ दिया. अब इस नाम से तो आप नहीं पहचानोगे, तो जिस नाम से उन्हें बुलाया जाता था वो मैं आपको बताऊं, टुनटुन. आज उनकी जयंती है, आज ही के दिन वो पैदा हुई थी 11 जुलाई को, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा उनको याद करना तो बनता ही था. बाबुल 1950 की जो फिल्म थी उसमें उनका जो कास्ट हुआ था, कास्ट करवाया गया था, उसके बाद वो सुपरस्टार दिलीप कुमार हीरो थे उसमें, तो उससे जो उनका नाम बना, मजाकिया अंदाज पर स्क्रीन पर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली हमारी टुनटुन, जिन्हें टुनटुन जी, टुनटुन मौसी प्यार से बहुत सारी चीज़ बुलाया करते हैं, और आज भी पुरानी फिल्में देखो तो हर कोई उन्हें देखकर मुस्कुराए बिना रह तो नहीं सकता. जब अपनों ने ही साथ नहीं दिया तो परायों से क्या गला, है ना. तो इसीलिए देखे, शिक्षा की वजह से कितनी सारी मुश्किलें भी आईं, पर कर भी क्या वो सकती थी. जितने भी पत्थर फेंके गए जिंदगी में, सबका सामना करते हुए 5 दशक से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा फिल्में तो उन्होंने की है भाई, इतनी ज़्यादा. 2003 में कुछ 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. और दुख की बात तो यह है कि अंत के समय में भी उनकी ज़िंदगी में भी परेशानियाँ, आर्थिक परेशानियाँ थीं. तो है ऐसा, जब अपने गम ज़्यादा लगने लगे तो किसी प्यारे से किरदार या प्यारे से इंसान, हमारे सितारे कोई ऐसे होते हैं जिनकी ज़्यादती ज़िंदगी के बारे में कभी कभी हमें कुछ नहीं पता होता है ना.

केके की मधोश कर देने वाली आवाज, समीर के लिरिक्स। आप सुन रहे थे मस्त मुंबई अपनी आरजे मृणमयी मनजा के साथ। अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको सुनाऊंगी इस घंटे के मुख्य समाचार 10 बजे, और उसके बाद होगा नमस्ते भारत। तो कहीं नहीं है जाना, बस हमारे साथ बने रहिए।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों में रक्षा, पशुपालन एवं डायरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

पूर्वी नौसैनिक बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। मुंबई स्थित मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित युद्धपोत महेंद्रगिरी देश के अग्रणी स्वदेशी स्टील युद्धपोतों में से एक है। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। लॉस एंजलिस के इंगलवुड में खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो 28वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। लंदन में लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में खेल में कल 21 रन पर 1 विकेट से स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माइया बाउचियर 17 और हीटर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मंदाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए। इंग्लैंड की ओर से सोफी एक्लेस्टन ने 3, मैडी विलियर्स, इसी वोंग और लॉरेंस फाइलर ने 2-2 विकेट लिए। इसी के साथ समाचार समाप्त।

नमस्कार, स्वागत है आपका। सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल, सीधा प्रसारण आकाशवाणी मुंबई की मीडियम वेव यानी कि 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर डीआरएम पर भी सुन सकते हैं, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी। स्वागत है आपका। अब वक्त है नमस्ते भारत का। तो नमस्ते भारत, कैसे हो?

बीरा यूं ही आगे बढ़ते रहना है, चाहे जितना भी कुछ बुरा हो रहा हो अपने साथ। सुनो गौर से दुनिया वालों, सामना तो करना ही पड़ता है ना। नमस्ते भारत सुन रहे हो इस वक्त 107.1 FM रेनबो पर। थोड़ी देर पहले हम लोग कहानी सुन रहे थे टुनटुन जी की, उनकी संघर्ष गाथा की। प्यारी सी लड़की, कितना कुछ नहीं झेला हमारी जसकिरत या इसी बात के साथ सच में कितनी सारी चुनौतियां होती हैं जो कि लड़कियों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है, मतलब आज भी। तो यही बातें हैं कि इतने सालों में भी कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं। पर हाँ, आज मौका है, दस्तूर है, शनिवार का दिन है और आपको पता है कि नमस्ते भारत की जो थीम होती है किसी सामाजिक विषय पर आप और मैं बैठकर चर्चा करते हैं। तो गानों के साथ, म्यूजिक के साथ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल पहले शाम को ढलने देते हैं महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में सुर, जो कि आप सभी मुझे फ़ोन करके भी और मैसेज करके भी लिख चुके हो। वैसे हमने काफ़ी सारे गाने उनके सुने हैं और ये अगला वाला आ रहा है आपके पास।

पर वहीं छोटी छोटी समस्याएं जो कि दूसरों के लिए छोटी होती हैं हमारे लिए नहीं, लेकिन उनका सामना करते हुए मानो यूं ही आप सड़क पर चल रही हों, और ये हर किसी के साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं हो चुका होता है, और इतनी बड़ी समस्याएं होती हैं कि इनको हम कम वाला समझकर आगे बढ़ जाते हैं। पर पता है क्या, जब कोई लड़का बाइक पर आता है, एक सेकंड देखता है, कुछ छेड़ के, कुछ बोल के, बुरा सा, अश्लील सा, या तारीफ भी क्यों ना हो लेकिन बुरी तरीके से, आपको पता ही है, स्पीड से फरार, उनको क्या लगता है कि बस बोल दिया चले गए, जैसे कमेंट सेक्शन में ट्रोल कर दिया चले गए और फिर उनका कुछ अता पता होगा नहीं। ऐसे में करे भी तो क्या करे, नन्ही सी जान है ना, अगर पीछे पलट के देखे भी तो उनको लगेगा कि चलो रिएक्शन मिल गया। इतना भी नहीं सोचते कि उस एक पल का जो डर है, जो घबराहट है कि अब इससे बात आगे बढ़ेगी क्या, क्योंकि इतनी बुरी चीज़ें होती रहती हैं, तो ध्यान भटकता है। और सड़क पर ख़ास तौर पर आपको पता ही है कि रास्ता पार करना होता है, उस समय गाड़ी चलाते हुए कोई भी दुर्घटना घट सकती है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी अगर जान भी चली गई तो। घबराहट में दुर्घटना की संभावना आपको पता ही है हर किसी के लिए ज्यादा होती ही है।

दूसरों की खुशियों में खुश होते हुए हम क्वीन में कंगना की जीत देखते हुए, जैसे अरिजीत सिंह की आवाज, अनुता दत्त, अमित त्रिवेदी का म्यूजिक।

गंभीर विषयों पे वैसे भी कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन सामाजिक विषय पे बात करना आज फर्ज है। नमस्ते भारत। भारत मेरी जान, कैसे हो? तो वही जो चाय पीते पीते नहीं बात करना चाहते हो, उसी बात पे। सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं कहीं से खबरें आपके पास आ जाती हैं। कई बार हम बच जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, सच्ची बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कुछ भी बुरा हमें छू तक ना पाए। हम बस अपनी एक दुनिया बना लेते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, किसी के साथ कुछ नहीं बुरा हो रहा। ऐसी एक बहुत ही आम सी बात पे शुरू करती हूँ मैं। एक रील देखी थी मैंने, पता है, थकी सी एक लड़की थी, मस्त लंबे कभी ना समाप्त होने वाली ट्रैफिक में। आपको पता ही है ऐसा हो जाता है कभी कभी, है ना, हमारे बड़े शहरों में जहाँ आप घंटों तक एक ही सड़क पर अटके हुए हों। तो जाम ऐसा था कि खुलने वाला था नहीं, और कोई भी हो सकता है, आपको पता ही है, कोई डॉक्टर हो सकती है या फिर किसी कॉरपोरेट मजदूर की बात कर लें, लंबी शिफ्ट हो या फिर नई वाली माँ हो, हमें क्या पता। सामने वाले के बारे में हमें वैसे भी कभी कुछ नहीं पता होता। तो अचानक काले अंधेरे में, काले पोशाक में, हेलमेट पहने हुए एक लंबा चौड़ा आदमी दरवाज़ा खटखटाता है। अब सोना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं तो सबको बोलती हूँ, इसमें लड़का लड़की का कुछ नहीं है, आप कहीं से भी हो, बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। पर अगर गलती से मिस्टेक हो जाए, उस वक्त जब हम, आप या मैं भी घर पे जब उठते हैं, आपको पता ही है कैसे अचानक से सब कुछ समझ आने में थोड़ा वक्त लग जाता है ना, तो वैसे ही उसको नहीं समझ आया। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक तो ये है, तो थोड़ा सा एक वो डिफेंस मोड में लड़कियां आ जाती है कभी कभी, और सामने बाइक पार्क्ड है वो भी टेढ़ी, तो उन्होंने बोला कि हाँ तो आप आगे तो करें, मतलब हटाएंगे तभी तो। इतने सी बात पे इतना जो पोलाइट होने की एक उम्मीद होती है ना लड़कियों से, सबकी कमेंट पे कमेंट, भाई साहब कि मतलब क्यों नहीं अच्छे से पेश आए, एक तो बंदा मदद कर रहा है, बात सही है, उसे थोड़े ही पता है। आपको नहीं पता ना कि एक लड़की के साथ ऐसे कितने हादसे हो चुके होंगे पहले, जिनसे, जिस वजह से वो हमेशा ढाल लेकर चलती हैं। उन्हें नहीं पता होता ना कि क्या है, तो वो कॉशन, वो डर, वो एक अपना बचाव करने का जो एक जज्बा है वो तो रहता ही है। तो जब अपने आप को उनकी जगह पे रखते हैं तभी समझ आता है। तो अगर कभी कोई आपसे बुरा बर्ताव कर भी दे तो बिल्कुल बुरा महसूस मत करना।

पैदा की आवाज पिंक का ये गाना। सभी के फेवरेट बच्चन साहब हमारे अमिताभ बच्चन इसी फिल्म में बोलते चले गए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कई बार हमको इसी विषय पे फिर से बात करना पड़ता है कि ना का मतलब ना ही होता है। अब देखे ना, जैसे हादसों की बात कर रहे थे तो कितनी सारी चीजें हो चुकी होती हैं कभी कभी किसी के साथ अपनी जिंदगी में। मतलब कॉलेज में जाने वाली लड़कियां भी क्यों ना हो, नए आप 19 साल की एक लड़की की कहानी, जैसे कॉलेज से स्कूटी पर आप वापस आ रहे हो, दो दोस्त और उसी बीच में दो बाइकर साथ आपके चल रहे हो, तो डर आपको लगता है कि कहाँ कब क्या चीजें एस्केलेट हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं बात, है ना। तो आपको डरा कर धमका कर किसी को नीचा दिखा कर जो ये खुशी क्रिमिनल्स को मिलती है, आए हाय। पर क्यों क्यों ये इतना आम है कि हम चीज़ों को बोलते चले जाते हैं कि चलो ये बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं है, क्योंकि अब तो आदत सी है ऐसी जीने की वाली बात हो जाती है ना। अब सामाजिक विषय पे बोले तो आजकल तो जो डेटिंग का जो सीन है वो भी कितना खराब हो चुका है। मतलब बातें करवा लो आशिकों से, है दीवानापन, आशिकी टूट कर चाहना, जान दे देंगे न जाने क्या क्या नहीं सुनती है लड़कियां हैं। पर जब बात सिर्फ एक डिनर की आती है तो कहाँ कब क्या बदल गया हमारे समाज में। ये वही सभ्यता है जहाँ पर हम मेहमानों को बुलाते हैं तो उन्हें भी भगवान समझते हैं, किसी को हमारे यहाँ जन्मदिन में बुलाएं या मतलब दोस्त हो वगैरह कोई भी, खिलाते तो हम ही हैं, मतलब सेवा तो हमारा धर्म जिस पे हम गर्व करते हैं कि हम कितना खुश नहीं होते मेहमान नवाजी हमारी इतनी अच्छी है वगैरह वगैरह। तो क्या हो गया हमें, कहाँ छूट गए हम कि एक डिनर को भी लोग स्वीकृति समझ बैठते हैं कि बाकी सब चीज़ के लिए कैसे हो सकता है। और सिर्फ उतना ही नहीं, देखिए क्राइम तो हर जगह होता है पर उसे कैमरा के सामने इतनी खुशी से स्टेज पे लोगों का बोलना और उसी के साथ साथ किसी लड़की के साथ अगर ज़बरदस्ती हुई है तो उस पर कैश प्राइज देना, उसको सराहना, ताली मारने के लिए बोलना, मतलब कुछ भी चल रहा है। इतना कैसे हम लोग बिगड़ चुके हैं, क्या कहाँ छूट रहा है कि सहमति इतनी छोटी सी चीज़ इतना आसान है भाई। एक मत होना यानी

दोनों लोगों का एक ही चीज पे मानना, और कहीं अगर लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो इतना गुस्सा क्यों क्यों ये हो रहा है आजकल कि आप अगर कोई मना कर रहे हैं तो कभी ना कभी ना सुनने की आदत ज़िंदगी में होनी चाहिए। हर चीज़ हर किसी को नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं जो नहीं पा सकते, तो ज़रा सा उसे डील करने की क्षमता होनी चाहिए, है ना? आपको क्या लगता है?

मेरे प्यारे से मर्द समाज जो हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त 865-7607-1 पर 8 6 5 7 6 1 0 7 1। पंकज लिखते हैं, ना सुनने की आदत जिंदगी में होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही कही आपने आरजे मैडम जी। तो हाँ, बात तो सही है। फिर अंकित लिखते हैं कि ये तो हमारा रोज का है, गम तो अपना साथी है। तो है भाई मेरी जान, आपको नहीं कह रही हूँ, कई सारे लोग हैं जो कि समझते हैं। पर पता है क्या, जब भी आप ये कह जाते हो ना कि आप बिल्कुल समझते हैं, अच्छे हैं, सही है, पर जहाँ कहीं आपके ग्रुप में कोई आपका जानने वाला है, कोई पहचानने वाला है, जिसको मतलब जिसके साथ आप उठते बैठते हो, कभी भी किसी भी एक पल में कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि कुछ ऐसा वो बोल गए कि आपसे वो हजम नहीं हुआ, कि ऐसे कैसे लड़कियों के बारे में, मतलब नारी का सम्मान होना चाहिए, पर अगर नहीं है और ऐसी कोई बात कोई कह जाए और आप चुप रह गए, तो क्या आप उनके साथ ही नहीं हुए? कड़वा सच कभी कभी पीना बड़ा मुश्किल होता है। हमें तो ऐसा ही होता है कि अपनी चीज़ें नहीं समझ आती। कई बार लोग ये भी सोच के घबरा जाते हैं कि भाई हम कर भी क्या सकते हैं, करना तो चाहते हैं मदद, पर करे तो कैसे करे सहायता। बस किसी एक की भी सोच आप बदल लो ना, वही बहुत है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चीज़ों को समझा के कि जो भी आप चाहते हो या वो आपको नहीं मिल सकता, तो अगर

आप कोशिश करते हैं मोहब्बत में और नहीं सफल होते हैं, तो ऐसा नहीं ना कि आप हिंसा की तरफ चले जाएं, एसिड की तरफ चले जाएं। मतलब जब आप एक नॉर्मल से फिल्म में भी एक सीन देखते हैं तो भी लोग क्यों इतना घबरा जाते हैं, कांप जाते हैं? होगा कुछ और, पर आपको लगेगा वो, क्योंकि ये इतना आम हो चुका है इसी वजह से। और चीज़ें आम हो जाती हैं तो फिर ऐसा तो नहीं है ना कि अपराध अपराध नहीं रहता, वो तो फिर भी रहता ही है।

बस ऐसे ही देखते देखते जाने का समय एकदम करीब, थोड़ी देर में वैसे आप सुनोगे ब्रेक फ्री, ठीक 11 बजे समाचारों के उस पार। मैं हूँ आपकी आरजे मृण्मयी मनोजा। और सच बातें यूं ही है कि समाज जिस तरफ जा रहा है, जैसे कि आपके मैसेजेस आए बिल्कुल सही है कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ऐसे में जैसे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, ठीक उसी साथ अगर सहमति की बात, ये डिस्कशंस, ये सामाजिक विषय भी हर घर में होने लगे तो फिर ये नौबत ही ना आए, है ना। हिंसा की बात कभी ना हो, वहाँ तक आप कभी पहुँचे ही नहीं। और सही कहा आपने कि ज़माना यही है जहाँ हम उसी सभ्यता से आते हैं जहाँ हर लड़की के पीछे देवी नाम जुड़ा रहता था, या फिर जैसे साउथ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो, कई जगह पे आज भी लोग माँ करके बोलते हैं। कोई भी लड़की हो, छोटी हो बड़ी हो, कई बार वो एड्रेस करने के लिए जैसे ताई यहाँ बोलते हैं, अलग अलग चीज़ें जो बोली जाती हैं, छोटी हो बड़ी हो हर किसी के लिए वैसा बोला जाता था। बोलना और मानना दो चीज़ें हैं, दिल से मानना होता है। जैसे हर इंसान के लिए शराफत अपेक्षित ही थी हमेशा, अपेक्षा तो है ही, एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए तो जेंटलमैन आप कह लें या फिर आप भद्रलोक जैसे हम लोग कहते हैं वो कह लें। और प्यार मोहब्बत की बात हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ ऐसा होता था, पूरी दुनिया में क्या कुछ नहीं करते थे आशिक भाई, मतलब रोमियो जूलियट से लेके हीर रांझा तक, लैला मजनू तक, क्या कुछ नहीं करते हैं कि अपने दिल की बात बस अपने महबूब तक पहुँचा भी पाएं। तो लड़कियां जो है अपना स्टैंडर्ड्स इतना भी ये ना करें कि भाई सब लोग बुरे हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। लोग दुनिया में अभी भी बचे हुए हैं, उनके बीच में बस परख करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और सुरक्षित रहना वो भी साथ ही साथ। इसीलिए कभी भी कोई भी कहीं पे भी आपको लगे कि उसे आपकी मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर उनके लिए खड़े हों। तो इसी बात पे जो गम है जो रिजेक्शन है वो तो चले मिल बांट के हम कर ही लेंगे, और तकदीर से टकराते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते, इसी तरह खिलखिलाते रहो मेरी जान।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन एयर पे। सुबह के ठीक 11 बज चुके हैं, आइए नजर डालते हैं इस वक्त की समाचारों की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। ये प्रतिबंध ईरान के नए नेता मुस्तफा खामेनेई के एक प्रमुख वित्तीय सहयोग

उद्योगी सहित 13 अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं पर लगाए गए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अनुसार दुबई स्थित ईरानी बैंकर और कारोबारी अली अंसारी पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन पर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने का आरोप है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े 3 एक्सचेंज हाउस और कई कंपनियों को भी प्रतिबंधों के दायरे में शामिल किया है। समाचारों में आगे है, केंद्रीय सड़क

जगह बना ली है। लॉस एंजलिस के ईगलवुड में खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल्स में के पहले हाफ तक दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर थीं। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो के 88 मिनट में किया गया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आप बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो की मुंबई प्रसारण सेवा के साथ।

बिल्कुल, हमारे भी दिल में सिर्फ आप और आप और आप सब हैं। नमस्कार मुंबई, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, और साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन एयर पे, बिल्कुल लाइव हमारे मुंबई स्टूडियो से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ, और शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा शो ब्रेक फ्री, जहां पर हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि उन मुद्दों को समझते हैं और जो हमारे आज और आने वाले कल दोनों को बेहतर बनाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने समाज की परवाह नहीं की और वो जो है अपने सभी तरह के नियमों और बंधनों से ब्रेक फ्री होकर आज जिंदगी में कुछ अलग कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम ब्रेक फ्री में डिस्कस करते हैं। और 11 जुलाई जो आज का दिन है वो पूरी दुनिया विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बढ़ती जनसंख्या का मतलब सिर्फ ज्यादा लोग नहीं होता, बल्कि ज्यादा जरूरतें, ज्यादा संसाधन पर दबाव और भविष्य की नई चुनौतियां भी हैं। आज

बात करेंगे छोटे परिवार, बेहतर भविष्य और समझदारी के से लिए गए फैसलों के बारे में। तो आपको क्या करना है, आपको बस हमारे साथ रहना है, क्योंकि आज की जानकारी आपके परिवार और समाज सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

तो भाई हम में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये विश्व जनसंख्या दिवस क्यों। तो आपको ये बता दूं कि विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा लोगों का ध्यान जनसंख्या से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर आकर्षित करने के लिए की गई थी। आज चर्चा केवल जनसंख्या बढ़ने की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिले, रोजगार के अवसर मिले और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2026 की जो थीम है वो ये है कि आज और भविष्य के लिए युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना। यानी जब युवाओं को सही अवसर मिलेंगे तभी तो समाज का संतुलित विकास हो पाएगा। कभी कभी हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, छोटा परिवार सुखी परिवार। आज विज्ञान और समाज दोनों यही बात दोहराते हैं। जब परिवार अपनी क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार बच्चों की योजना बनाता है तो बच्चों की शिक्षा बेहतर होती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है और परिवार फिनेंशियली भी काफी मजबूत रहता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई संख्या तय की जा रही है, बल्कि मैसेज सिर्फ इतना सा है कि परिवार नियोजन एक जिम्मेदार और स्वैच्छिक निर्णय है, जिसे लेना या नहीं लेना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपनी जिम्मेदारी कितने बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है।

दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि ठीक 11:30 पर आप सुनेंगे हमारा दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम स्टम्प्ड, तो आपको उसके लिए इंतजार करना होगा। और ठीक 12 होंगे समाचार हमारे मुंबई केंद्र से, और समाचारों के उस पार मैं और आप एक बार फिर से करेंगे मुलाकात म्यूजिक कैफे में, जहां पर मैं आपके लिए लाई हूं फिर से कुछ गीतों के पीछे छिपी हुई कुछ खूबसूरत कहानियां। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं जनसंख्या की, संसाधनों की, परिवार नियोजन की। तो भाई जरा सोचिए, अगर किसी शहर में रहने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जाए तो सबसे पहले किस चीज पर असर पड़ेगा? सड़कें, पानी, अस्पताल, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, यातायात, रोजगार। इसलिए जो जानकार लोग हैं उनका ये कहना है कि जनसंख्या और संसाधनों के बीच एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सतत विकास की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है पॉपुलेशन और रिसोर्सेस के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखना। माना कि युवा हमारे देश का भविष्य है, इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस का जो संदेश है वो खासतौर पर युवाओं के सपनों और उनकी आकांक्षाओं पर केंद्रित है। जब युवा शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तभी देश अपनी जो है जो शक्ति है उसको विकास में बदल पाएगा। जी हाँ, इसलिए आज जरूरत केवल संख्या गिनने की नहीं, केवल नंबर्स काउंट करने की नहीं है, बल्कि हर इंसान को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की है। इसलिए हमेशा ये याद रखना बहुत जरूरी है कि बैलेंस्ड पॉपुलेशन, स्वस्थ परिवार और जागरूक समाज, यही एक समृद्ध भविष्य की पहचान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत, गीत के उस पार बातें बेशुमार। बने रहिए हमारे साथ यहीं 107.1 FM रेनबो पर, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ।

तो भाई आज तो मुझे लगता है कि ब्रेक फ्री का सफर इतना ही होगा, क्योंकि ठीक 11:30 पर होगा हमारा दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम स्टम्प्ड। तो आप उसके लिए इंतजार कीजिए, मैं आपसे बस कुछ ही देर में मिलूंगी स्टम्प्ड और समाचारों के उस पर, जब म्यूजिक कैफे में हम करेंगे ढेर सारी बातें कुछ गीतों की कहानियों के बारे में। तो बस बने रहिए हमारे साथ।

0: वेलकम बैक 107.1 एफएम रेनबो। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ। और साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन एयर पर बिल्कुल लाइव हमारे मुंबई स्टूडियो से। आज तो भाई आपसे ढेर सारी बातें कर ली ब्रेक फ्री में, स्टंप भी आपने सुन लिया। अब जो थोड़ा बहुत वक्त हमारे पास है उसमें मैं आपको बता दूं, जो लोग हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय महोबा जी, पंकज मोहर जी, अंकित जी, दीपा पालकर जी, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, बाबा दादर जी, अशोक पाटिल वराली से, फिरोज सिगनपुरिया जी, प्रमोद चिंचोलकर जी, विजेंद्र घटोल जी अकोला से, और हरजिंदर छिंदा जसवीर जी, प्रणव शिंदे जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुबह से हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे इतना वार्म वेलकम आपने दिया है, गीत जानकारी बातें सब आपको पसंद आ रही है और हमें आपके भेजे हुए मैसेजेस पसंद आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। और अगर आप सब अभी अभी लौट कर हमारे पास वापस आए हैं और आपने अपना नाम मिस कर दिया है तो फिकर नॉट, जब हम एक से दो के बीच में आपकी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम करेंगे तब एक बार फिर मैं आपके नाम जो है सबके साथ साझा करूंगी। फिलहाल तो एक बहुत खूबसूरत सा गीत आपके साथ साझा कर रही हूँ।
1: Representing live, as y'all can see, time for some hip shaking, some back breaking, make way for the one.

ब्रेक फ्री कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार 107.1 FM रेनबो के साथ। जुड़े रहिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन एयर पर मुंबई स्टूडियो से बिल्कुल लाइव। दोपहर के 12 बज चुके हैं, आइए नजर डालते हैं इस वक्त की समाचारों की सुर्खियों पर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक शुरू हुई। बैठक के दौरान सदस्य देशों के परिवहन मंत्रियों ने अपने देशों के परिवहन से जुड़ी घोषणाएं पेश की। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाए जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। समाचारों में आगे है, अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने आज ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों में ईरान के नेतृत्व से जुड़े व्यक्तियों और वित्तीय नेटवर्कों को निशाना बनाया गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में वाणिज्यिक जहाजों पर तेहरान के हमले के जवाब में यह कार्यवाही की गई है। समाचारों के अंत में, भारत के ऊंची कूद के एथलीट और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक सर्वेश कुशारे ने मोनाको में डायमंड लीग एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अपने पदार्पण पर ही तीसरा स्थान हासिल करके खुद को विशिष्ट क्लब में शामिल कर दिया है। वो इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में शीर्ष तीन में जगह बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आप बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो की मुंबई प्रसारण सेवा के साथ।

यानी मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते, मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज़ हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों।

होगी, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

वेलकम बैक 107.1 एफएम रेनबो। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की मुंबई केंद्र से, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ, और कार्यक्रम है म्यूजिक कैफे। म्यूजिक कैफे में अक्सर मैं आपके लिए कुछ गीतों के पीछे छिपी हुई कहानियां लेकर आती हूं, कुछ ऐसी बातें लेकर आती हूं जो कहीं ना कहीं आपको शायद नहीं पता होती, और उस बात के बाद जब आप उस गीत को सुनते हैं तो उन गीतों की जो है सुनने की आपका जो नज़रिया है वो बिल्कुल बदल जाता है। और हम तो सब जानते ही हैं कि भारतीय सिनेमा संगीत के बिना अधूरा है, तो हमारी अधिकतर फिल्मों में गानों का जो है ना, फिल्मों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई बार फिल्में भले ही पिट जाएं लेकिन गाने उनके सदियों तक याद रहते हैं। कभी ये किरदारों के बीच रोमांस दिखाने में मदद करते हैं, कभी ये फिल्म का कोई राज खोल देते हैं, कभी इसी में कोई किस्से छुपे होते हैं, कभी कोई फ्लैशबैक होता है। तो हर गाने की अपनी एक कहानी होती है और हर गीत के पीछे होता है एक किस्सा, और ऐसे ही किस्सों को लेकर मैं आपके पास हाजिर हो जाती हूँ। तो आज भी ऐसे ही कुछ गीतों की कहानियाँ मैं लेकर आई हूँ आपके पास। बने रहिए हमारे साथ, आगे बात करेंगे एक 1951 में आई एक फिल्म के बारे में।

वेलकम बैक। दोपहर के ठीक 12:15 हो चुके हैं। मैं हूं ममता सहगल, आपके साथ 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। तो हम बात कर रहे हैं 1951 में आई एक फिल्म की, और ये जो गाना है जिसकी मैं बात कर रही हूं, इसने अपने फिल्म के टाइटल गीत को भी पछाड़ दिया। वो इसलिए क्योंकि ये बॉलीवुड का दूसरा ऐसा गाना था जो एक ड्रीम सीक्वेंस में फिल्माया गया था। जी हाँ, ये गाना जो था वो ड्रीम सीक्वेंस में था, और इस गाने के लिए पहली बार किसी फिल्म में इतना बड़ा सेट बना था, और ये सेट बना था आरके स्टूडियोज में। इस सेट को बनाने में तकरीबन 3 महीने का वक्त लग गया था, और इस गाने की जो शूट थी वो 72 घंटों में पूरी की गई थी, और बड़े पर्दे पर ये किसी 3D फिल्म के जैसे दिख रहा था। जी हाँ, सही पहचाना आपने, फिल्म का नाम है आवारा, और इसका जो टाइटल ट्रैक था आवारा हूँ टैन नन नन, वो भले ही बहुत बहुत हिट हुआ हो, लेकिन अगर गीत फिल्म के एक उम्दा गीत की बात की जाए जिस जो हर लिहाज में बहुत खूबसूरत था और बहुत यादगार बन गया था, तो वो था ये गीत जो एक ड्रीम सीक्वेंस में फिल्माया गया था, और बहुत बहुत खर्चा कर कर उस ज़माने के हिसाब से। आजकल तो ये सब बहुत छोटी मोटी बातें हो जाती हैं कि ड्रीम सीक्वेंस में शूट कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

तो ये था वो गीत जिसे ड्रीम सीक्वेंस में फिल्माया गया था, बेहद खूबसूरत था। जब आप इसे टीवी पर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि उस वक्त के हिसाब से ये गीत कितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया था। तो हमारे लिस्ट में जो अगली फिल्म शामिल है वो है साल 1970 में आई फिल्म। इस फिल्म के संगीतकार थे हेमंत कुमार साहब, और इस फिल्म में किसी एक गाने को चुनना ना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस फिल्म के जितने भी गाने हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। हम बात कर रहे हैं फिल्म खामोशी की, तो इस फिल्म का जो गीत है तुम पुकार लो, वो इतना खूबसूरत गाना है कि मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन जिस गीत की मैं बात कर रही हूं वो क्लासिक लिस्ट में है, क्योंकि यही वो गाना था जिससे किशोर दा ने कुछ ठहरे हुए गीत गाने की शुरुआत की थी। ये वो पहला गाना था जब उन्होंने गाया, और इसके बाद उन्हें शायद उन्हें यह एहसास हो गया होगा कि इस तरह की जो एक ठहराव वाले गाने होते हैं वो गाने में भी वो महारत हासिल रखते हैं। तो इससे पहले जो है किशोरदा इंडस्ट्री में हल्के फुल्के एनर्जी वाले गाने जो है गाते थे, और सब लोग उन्हें उसी तरह के गाने देते थे। लेकिन हेमंत दा की जिद पर उन्होंने जब ये गीत गाया तो एक इतिहास रच दिया। इस गाने को कोलकाता में हुगली नदी पर खुले में फिल्माया गया था, और हजारों लोग यहाँ शूटिंग देखने के लिए आए थे। तो वो गीत कौन सा है खामोशी फिल्म का, अगर आपने गैस नहीं किया है तो मैं आपको अभी सुनवाती हूँ।

तो सुना आपने, कितना खूबसूरत है ये गीत, और कैसे इस गीत में किशोरदा के गाने का अंदाज बिल्कुल बदल गया था। चलिए आपको सुनवाते हैं एक बेहद खूबसूरत सा गीत श्रेया घोषाल और तुच्छी रैना की आवाज़ों में। अब क्योंकि हमने आपको सुनवाया था वो शाम कुछ अजीब थी, ये शोर फिल्म से था, तो एक और शोर फिल्म का ही हम गाना सुना रहे हैं, लेकिन ये जो है ये शोर इन द सिटी का गाना है। और इसके बाद जिस अगले गीत की मैं कहानी आपको सुनाने वाली हूँ वो भी बहुत ख़ास है। बने रहिए हमारे साथ।

माफ कीजिएगा, शोर फिल्म का गाना मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, वो शाम कुछ अजीब थी, ये गाना खामोशी फिल्म से था। तो शोर फिल्म के जिस गीत की मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, 1972 में आई फिल्म थी और इसका ये गाना इतना ज्यादा फेमस हुआ था, लोगों को इतना पसंद आया था कि इस गाने में जो अभिनेत्री थी नंदा, उसे इस फिल्म की लीड समझा जाने लगा था। उन्हें लगा कि लीडिंग एक्ट्रेस जो है वो इस फिल्म की यही है, जबकि इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री जया भादुरी थी। इस गाने में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से लक्ष्मीकांत जी ने आवाज़ भी दी है और लता जी ने एक बच्चे की आवाज़ में गाना भी गाया है। इस फिल्म से जुड़ा एक अनूठा किस्सा ये था कि इस फिल्म में नंदा के किरदार के लिए मनोज कुमार शर्मिला टैगोर और स्मिता पाटिल के पास गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने इनकार कर दिया और फिर ये गीत करने का मौका मिला नंदा जी को। और फिर ये तो गाना हिट हुआ ही हुआ, नंदा जी भी लोगों के दिलों में बस गई। तो आइए सुनवाती हूँ आपको यही गीत जिसकी मैं बात कर रही हूँ, शोर फिल्म से।

यकीनन प्यार का नगमा है और ऐसा नगमा जो हमारे दिलों में आज तक बसा हुआ है। और कोई भी कसम, कोई भी वादा, कोई भी प्यार हमें इससे वफा करने से नहीं रोक सकती। और इसी बात में है अगली गाने का हिंट, कस्मे वादे प्यार वफा। 1967 में आई ये फिल्म सुपरहिट तो थी ही, फिल्म का नाम उपकार, लेकिन इसके गाने और मेरे देश की धरती सोना उगले, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन इस गाने को लेकर ना जो लेखक थे वो दुविधा में थे, क्योंकि कस्मे वादे जो थे उस गाने ने ना मेरे दिल में जो है कहते ना एक अलग जगह बना ली। तो फिर मैंने सोचा आपको इस गीत के बारे में ही मैं बताऊं। मेरे देश की धरती डेफिनेटली बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, लेकिन मुझे जो पर्सनल फेवरेट लगता है वो है कस्मे वादे प्यार वफा सब।

बातें हैं, बातों का क्या। अगर राइटर्स की भी बात की जाए तो पहले ये जो गाना है राइटर्स की, अगर कहते हैं ना लेखकों के अनुसार, अगर वो जिससे चाहते थे कि ये गाना गाए तो वो किशोरदास साहब थे और उन्हें ये गाना ऑफर भी हुआ था। लेकिन इस गाने को सुनने और समझने और गुनगुनाने के बाद किशोरदा ने ये जो गीत है इसके लिए मन्ना डे जी का नाम सजेस्ट किया और ये सलाह काम कर गई, क्योंकि मन्ना डे जी ने इस गीत में जो भाव दिए हैं वो बिल्कुल वैसे ही थे जो संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ढूंढ रहे थे। और एक खास बात इस फिल्म की ये भी देखिए, इस फिल्म से प्राण को अपनी जो दो दशकों से चल रही थी जो विलेन की इमेज थी उसे भी तोड़ने का मौका मिला था और यहां से उन्हें कुछ पॉजिटिव रोल्स भी मिलने शुरू हो गए थे। तो ये जो गीत है मेरा पर्सनल फेवरेट है जो मैं आपको अब सुनवा रही हूं।

चलिए, अब वक्त तो ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको फटाफट एक और फिल्म के पीछे, एक और फिल्म के गीत के पीछे की जो कुछ खास बात है वो आपको बताती हूँ। फिल्म का नाम है आंधी। इस फिल्म के इस गाने को लिस्ट में लाने का एक बहुत ही ख़ास टेक्निकल कारण है। वो ये है कि इस फिल्म के बहुत सारे गीत हैं जो बहुत बहुत खूबसूरत हैं। इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस्ते, या फिर तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये सब जो गीत है ना, ये भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन जब ये गीत था, इस मोड़ से जाते हैं, इस गीत को बनाते वक्त गुलजार साहब से आर डी बर्मन साहब ने पूछा, नशेमन जगह कहाँ है? तो फिर वही जो है, तेरे बिना ज़िंदगी से ये जो गाना है, वो इतनी बार देखा गया, इतनी बार देखा गया कि ये जो है रेट्रो की लिस्ट में शुमार हो गया। और इस गीत की वजह से जो है बर्मंदा और गुलजार साहब की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। तो आइए आपको सुनवाती हूँ यही गीत, तुम आ गए हो।

अब चाहूंगी आपसे इजाजत, क्योंकि ठीक 1 बजे होंगे हमारे समाचार मराठी में और समाचारों के उस पार होगा कार्यक्रम हिट एंड हॉट, जहां पर मैं आपकी फरमाइशें लूंगी। अब दिक्कत ये है कि फरमाइशें ऑलरेडी इतनी सारी आ चुकी हैं कि मैं अब डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि किसकी फरमाइश लूँ किसकी नहीं लूँ। एक एक शख्स ने 10-10 गीतों की फरमाइश दी है और फरमाइशें जो है 12 बजे से आनी शुरू हो गई हैं, तो अब मुझे बहुत काट छाँट करनी पड़ेगी। बहुत सारे मैसेजेस नीचे चले गए हैं, बहुत सारे मैसेजेस जो है अभी भी आ रहे हैं, तो अब बड़ा ही मुश्किल में डाल दिया आप लोगों ने मुझे, तो मैं इस मुश्किल को सुलझाने की कोशिश करती हूँ। एडवांस में आप लोगों को सॉरी भी कहती हूँ अगर इनकेस आपका मैसेज मुझसे मिस हो जाए, बिकॉज इतने सारे मैसेजेस हैं, इतना सारा प्यार आप लोगों का मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश माथुर जी, पंकज मोहर जी, प्रणव शिंदे जी, प्रमोद चिंचोलकर जी, शांताराम नादगांवकर जी, दीपा पालकर जी, अंकित जी, राजेंद्र परमार जी, रजनीकांत पाटिल जी, फिरोज सिगनपुरिया जी, अजय सखारे जी, संदीप कुमार जी, विजेंद्र घटोल जी, इनका नाम ओंकार काटकर जी, विजय महोबिया जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने हमें मैसेजेस भेजे हैं, सबने फरमाइशें भेजी हैं और बहुत सारी फरमाइशें हैं और मैसेज पे मैसेज आते जा रहे हैं। कोशिश करूंगी आप सबकी फरमाइशें पूरी करने की। फिलहाल इस घंटे का ये आखिरी गीत आप सभी के लिए।

वेलकम बैक 107.1 FM रेन वो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ लेकर कार्यक्रम हिट एंड हॉट। जैसा कि मैंने कहा था ढेर सारी फरमाइशें हैं, तो कार्यक्रम की शुरुआत मैंने एक फरमाइश के साथ की जो आई थी चेतन कुमार साहब की बिहार से, और इन्होंने जो है कुमार गौरव साहब को हैप्पी बर्थडे कहते हुए इस गीत की फरमाइश की थी, जिस गीत से मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही साथ प्रणव शिंदे जी भी कुमार गौरव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक गीत की रिक्वेस्ट की है जो है फिल्म मृत्यु दंड से, तो आइए सुनते हैं यही गीत। कोशिश करूंगी कि सबकी फरमाइशों को मौका मिले, बट टाइम टाइम टाइम टाइम की बात है।

तो ये जो गीत था इसकी फरमाइश आई थी विजेंद्र जी की, और अगले जो दो गीत मैं आपको सुनवाने वाली हूँ उसमें से एक की फरमाइश की है फिरोज सिगनपुरिया जी ने, जो अपने वर्ल्ड म्यूजिक लवर्स के ग्रुप को ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, और दूसरी फरमाइश है दीपा पालकर जी की। तो आइए सुनते हैं बैक टू बैक यही दोनों गाने।

वेलकम बैक 107.1 FM रेनबो, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ, और FM रेनबो का ये आकाशवाणी मुंबई केंद्र है जिस पर आप हिट एंड हॉट सुन रहे हैं और अपनी पसंद की फरमाइशें दे रहे हैं। तो भाई फटाफट से आगे बढ़ते हैं। मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोरा जी ने कहा है कि हम कोई भी गाना इनके नाम से प्ले कर सकते हैं। प्रमोद चिंचोलकर जी ने एक गाने की रिक्वेस्ट की है, कौन दिशा में लेके चला रहे भटूरिया, तो ये गाना अब हम प्ले करने वाले हैं। संजय दर्शन जी, आपने कुमार गौरव जी को बर्थडे विश भेजा है और कहा उनका कोई भी गाना प्ले कर दे, तो आपकी बर्थडे विश हम उन तक पहुंचा रहे हैं। और इनका फिल्म का जो गाना है वो हम ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं, तो आई एम सॉरी बट मैं वो गाना रिपीट नहीं कर पाऊंगी। यशवंत जी की भी कोई रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन वो चाहते थे हम उनका नाम हमारे इस कार्यक्रम में शामिल करें। तो यशवंत जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। अजय सखारी जी जाबाज फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, और साथ ही साथ में फरमाइश आई है सत्यनारायण कुरीन जी की राजस्थान से, जो मेघारे मेघारे ये गीत सुनना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं यही गाने, और अगर इसके बाद वक्त रहा तो डेफिनेटली मैं कोई और फरमाइश भी लूंगी।

भाई इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, और जैसा कि मैंने कहा मुझे 12 बजे से लोगों ने रिक्वेस्ट भेजनी, आप सभी ने शुरू कर दी थी। अब जाहिर सी बात है मैं कुछ रिक्वेस्ट जो है अपने कार्यक्रम में शामिल कर पाई हूँ कुछ नहीं, और आपकी शिकायतें भी शुरू हो गई हैं कि अभी तक जो है मेरी पसंद का गाना नहीं प्ले किया, अभी तक ऐसा नहीं किया। तो भाई आप भी थोड़ा सा हमारी प्रॉब्लम को समझ

एक तो ये है कि जब आप लोग लंबे लंबे वाले गाने रिक्वेस्ट करते हैं तो उस वक्त क्या हो जाता है कि गानों के जो नंबर है ना वो कम हो जाते हैं। हालांकि मैंने आज कोशिश की कि मैं जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के गाने जो है वो प्ले कर सकूं, और अब मुझे वक्त ज़्यादा परमिशन नहीं दे रहा है कि मैं बहुत सारी फरमाइशों को ले सकूं, लेकिन आप सभी के नाम मैं इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल कर रही हूं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमें जो है ओमकार काटकर जी ने पंढरपुर से, संदीप कुमार जी ने हमें मैसेज किया, ओमकार काटकर जी ने पंढरपुर से मैसेज किया है, संदीप कुमार जी ने मैसेज किया है, पंकज मोहर जी ने किया है, और जो आखिरी मैं रिक्वेस्ट लेने वाली हूँ वो है डब्लू जायसवाल जी के नंबर से आई है। ममता जायसवाल ने इसकी फरमाइश की है और इन्हें साजन मेरा उस पार है गाना सुनना है। साथ ही साथ में आई है हमें फरमाइश पद्मा टॉकीज से। पद्मा टॉकीज इन्होंने लिखा है नेपरा नगर मध्य प्रदेश, और रिक्वेस्ट करने वाले हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। मैं सबकी फरमाइशें आप लोग की आज नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि अभी आखिरी मेरे पास सिर्फ दो गीत बजे हैं जो मैं प्ले करने वाली हूँ, वो भी बहुत छोटे छोटे ही जाएंगे, पूरे पूरे गीत मैं नहीं प्ले कर पाऊंगी बिकॉज आपने काफ़ी लंबे गानों की फरमाइश की है। प्रमोद चिंचोलकर जी हैं, राकेश माथुर जी हैं, प्रदीप अनंत कृष्ण जी हैं, चेतन कुमार जी आपकी फरमाइश तो मैं प्ले कर चुकी हूँ, विजेंद्र जी हैं, मुकेश कश्यप जी हैं, इनका नाम है साउथ एक्सटेंशन से, गुरमीत सिंह मीता, और दीपा पालकर जी हैं, आनंदी यशवंत जाधव जी हैं, फिरोज सिगनपुरिया जी हैं, यशवंत आटमुटे जी हैं, सत्यनारायण जी आपकी मैंने रिक्वेस्ट प्ले की है, अजय सखारे जी हैं आपकी भी मैंने प्ले की है, तेरा साथ है कितना प्यारा ये आप ही की रिक्वेस्ट थी, मिंटू थॉमस जी हैं आपकी रिक्वेस्ट भी मैंने प्ले की है, शुभलक्ष्मी मस्तकर जी, अरुणा खार जी, दिग्दर्शन और कविता जी, अंकित जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मैसेजेस करने के लिए, लेकिन कई बार गानों की लेंथ की वजह से और वक्त की कमी की वजह से हम सारे गाने नहीं प्ले कर पाते हैं। फिलहाल मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ मेघारे मेघारे, लेकिन ये गाना मैं थोड़ा प्ले करूँगी क्योंकि अब मैंने कह दिया है कि मैं साजन मेरा उस पार है ये भी प्ले करूँगी, इसलिए ये गाने थोड़े थोड़े से मैं प्ले कर दूँगी आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया, कहा भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए UN सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट

0: दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
3: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है, उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गईं। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
4: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप इनसे दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
1: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

भाई तो बच्चे धोखा।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: वक्त कभी ठहरता नहीं और जो ठहर जाए वो जिंदगी नहीं होती। दोस्तों नमस्कार, शाम के ठीक 5:03 होने को है और स्टूडियो में आ गई हूँ मैं, यानी कि आपकी आरजे दोस्त अमिता, लेकर अपने साथ अपना वही सुनहरा पिटारा जिसमें होते हैं बहुत सारे गाने और साथ ही साथ बहुत सारी बातें भी। दोस्तों शाम के ठीक 5 से 6 का जो वक्त होता है कार्यक्रम लव यू जिंदगी का, और आज लव यू जिंदगी कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं उन बातों के बारे में जो दिखने को तो बहुत ही छोटी है पर उनके मायने बहुत बड़े हैं। जिंदगी की सबसे अच्छी चीजें अक्सर हमेशा के लिए नहीं होती। ये सारी बातें हमने न जाने कितनी बार पढ़ी होंगी, सुनी होंगी और कही होंगी, लेकिन हम में से कितने सारे ऐसे लोग हैं या उनमें मैं अपने आप को भी शामिल कर रही हूँ कि सच में इस बात को हम जी पाते हैं। वो बातें जो बहुत अच्छी लगती हैं, वो पल जो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होते हमारे पास। होती हैं तो बस उनकी यादें। और आज लव यू जिंदगी कार्यक्रम में करेंगे ऐसी ही न जाने कितनी सारी बातों के बारे में बातें, और साथ साथ सुनेंगे गीत भी।

गुरु फिल्म से ये गीत या रहमान, चिन्मय, मुर्तजा और साथियों की आवाजों में। 5:09 का वक्त, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम लव यू जिंदगी, अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ। और आज बातें उन छोटी छोटी बातों के बारे में जिनके मायने बहुत होते हैं, पर वो कब आकर चले जाते हैं और फिर हम बस कहते रह जाते हैं कि अरे भाई छुट्टियां बीत गई, वो पल बीत गया, पता ही नहीं चला। जरा सोचिए ना दोस्तों, बचपन कितनी जल्दी बीत गया। बचपन में जब छोटे थे तब लगता था कि कब बड़े होंगे, बड़े होने के बाद फिर से उसी बचपन में जाने को मन करता है। माँ की वो गोद, पापा की उंगली पकड़कर चलना, स्कूल की घंटी, छुट्टियों की मस्ती, दादी नानी की कहानियाँ, कितना कुछ और कितने ऐसे पल जो बस ऐसा लगता है कि अभी बस कल की ही तो बात है। उस समय लगा था कि ये सब तो हमेशा रहेगा, लेकिन आज वो सब यादों की एल्बम बन चुका है। और सच भी तो है ना कि जिंदगी का हर खूबसूरत पल मेहमान बनकर आता है, और इसीलिए मेहमान का स्वागत भी मुस्कुरा कर करना चाहिए और साथ ही साथ विदाई भी प्यार से देनी चाहिए। पर बात यही होती है कि जब हम उस पल में होते हैं तो कई बार ये समझ नहीं पाते कि ये पल भी हमेशा के लिए नहीं है, बीत जाएगा। इसीलिए खुल कर और जी भर कर जी लो। और भी कुछ बातें हैं, साथ ही साथ और भी कुछ गाने हैं।

0: बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी।
1: पगली GPS फॉलो करना, नहीं तो गुम हो जाएगी।
0: अगर गुम हो भी जाओ तो कोई बात नहीं।
1: बिल्कुल, क्योंकि पंछियों के पास भी कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें।
0: हाय, ये है FM Rainbow 107.1। यूं ही खट्टी मीठी बातों से जीत लेंगे आपका मन,
1: क्योंकि हम हैं म्यूजिकली यर्स।

सुर निगम श्रेया घोषाल की आवाजों में हे बेबी फिल्म का ये गीत ओनली ऑन एफएम रेनबो जो है म्यूजिकली योर्स। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ और बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं मेरे इनबॉक्स में। अरविंद कुलकर्णी का मैसेज आया है, लिखते हैं गुड इवनिंग और साथ ही साथ कि आज के गाने सुनकर मौसम एकदम रोमांटिक हो गया है। वहीं अंजू जी ने भेजा है मैसेज अंधेरी ईस्ट से और साथ ही साथ भेजी है दो प्याली चाय। वैसे एक बात कहूँ आप सबको कि सच में इस वक्त ना चाय की बड़ी ज़रूरत लग रही थी और ठीक है फ़ोटो ही सही, फ़िलहाल फ़ोटो से ही हम काम चला लेंगे। और लिखती हैं अंजू जी कि बस यस बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली की तरह। और विजेंद्र घटोल का मैसेज आ गया है अकोला से और लिखते हैं कि भाई गाने की प्लेलिस्ट बहुत ही खूबसूरत है। और संजय दर्शन का भी मैसेज आ गया है, लिखते हैं गुड इवनिंग। वहीं प्रकाश शिंदे का भी नमस्कार आ चुका है और लिखते हैं लव यू जिंदगी शो पर मेरा ही वो स्वागत कर रहे हैं, ये सुनकर ये पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। 5:22 का वक्त दोस्तों कार्यक्रम लव यू जिंदगी पर आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं छोटे छोटी बातों की, उन्हीं खूबसूरत पलों की जो कब आते हैं और कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है, बस उनकी मीठी यादें हमारे साथ रह जाती हैं। दोस्तों क्या कभी आपने गौर किया, बारिश की पहली फुहार, सर्दियों की धूप, बसंत की महक या फिर शाम का ढलता सूरज, इनमें से कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन जब तक रहता है दिल को सुकून दे जाता है। फूल अगर कभी मुरझाते ही नहीं तो शायद उनकी खुशबू की कीमत भी हमें नहीं महसूस होती। और इसीलिए जिंदगी का हर मौसम, हर रिश्ता, हर मुस्कान और हर मुलाकात अपनी एक उम्र लेकर आती है। और इस खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं

0: सबके अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
4: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
1: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
5: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।

श्रेया खुशाल और विजय प्रकाश की आवाज़ों में हॉलीडे फिल्म का एक गीत ओनली ऑन एफएम रेनबो म्यूजिकली योर्स और 5:34 का वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं आप लव यू जिंदगी अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उन्हीं सारी बातों के बारे में, उन्हीं छोटे छोटे पलों के बारे में जो हम बहुत संभाल कर बचा कर रखते हैं। वैसे एक छोटी सी कहानी, और मुझे लगता है कि हम सभी लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे। दोस्तों, एक बुजुर्ग से एक बार किसी ने पूछा कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अफसोस क्या है, तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ज़िंदगी भर अच्छी क्रॉकरी, जो हम कांच के बर्तन होते हैं, वो अलमारी में संभाल कर रखे थे, ये सोचकर कि जब कोई एकदम ख़ास मेहमान आने को होगा मैं तभी उसे इस्तेमाल करूँगा। लेकिन फिर एक दिन एहसास हुआ कि सबसे ख़ास मेहमान तो हर दिन मेरे अपने ही थे। दोस्तों, हम भी अक्सर अपनी खुशियाँ, अपना समय, अपना प्यार किसी सही दिन के लिए बचा कर रखते हैं, लेकिन जानते हैं सबसे सही दिन कौन सा होता है? वो होता है आज का दिन, अभी इस वक्त का पल। हम में से कितने सारे लोग यही सोचते हैं ना कि जब थोड़े से पैसे आ जाएंगे तब हम घूमने जाएंगे, थोड़ा अगर प्रमोशन हो जाए तब बच्चों को बाहर घुमाने ले जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, काम कम होगा तब जिएंगे। लेकिन ज़िंदगी किसी के इंतज़ार में नहीं रुकती। अगर बारिश हो रही है तो भीग लीजिए, और अगर माँ चाय के लिए बुला रही है तो बस चले जाइए, उनके साथ बैठाइए। और अगर बच्चा खेलना चाहता है तो बस 5 मिनट ही सही, उसके साथ थोड़ा बच्चा भी बन जाइए, क्योंकि अगर ये पल चला गया तो फिर नहीं आएगा। और हाँ, इन सारी बातों की लिस्ट में एक और लिस्ट भी है, एक और बात भी है कि अगर किसी दोस्त की याद आ रही है तो उसे बिना किसी काम के बस यूं ही फ़ोन कर लीजिए, बता दीजिए उसे कि भाई हाँ, तुम्हारी याद आ रही थी, बस इसीलिए आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन कर दिया। ज़रा अगर ये वाली जो बात है ना, ये ज़रा करके तो देखिए, और फिर देखिएगा मुस्कुराहट सिर्फ आपके चेहरे पर नहीं खिलेगी, उस दोस्त के चेहरे पर भी खिल उठेगी।

0: तिरंगी बनाएंगे।
1: सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो,
2: म्यूजिकली योर्स।
3: और आप ये सब म्यूजिकली योर्स FM रेनबो पर, मैं हूँ फिलहाल आप सभी के साथ आपकी आरजे दोस्त समता, और बातें कर रहे हैं लव यू जिंदगी कार्यक्रम में उन पलों की, जो पल आते हैं बीत जाते हैं और हमेशा के लिए बहुत सारी यादें दे जाते हैं। प्रकाश शिंदे लिखते हैं कि बड़ी ख्वाहिशों के पीछे भागना छोड़ दिया है हमने, अब तो चाय की हर चुस्की में हम सुकून ढूंढ लेते हैं। मंजिल की चाह में रास्ते की खूबसूरती मत भूलना, क्योंकि असली मज़ा तो सफ़र के इन छोटे छोटे पलों में है। तलाश बंद की तो खुशियाँ खुद ही घर चलकर आ गई। कभी कभी बिना वजह मुस्कुराना भी सबसे बड़ा सुकून दे जाता है। बहुत पते की और बहुत ही दिल छू लेने वाली बातें लिखी हैं आपने। वहीं दीपाली शिरोडकर भी लिखती हैं कि भाई गुड इवनिंग, कार्यक्रम बहुत ही पसंद आ रहा है, धन्यवाद। अकोला से विजेंद्र खटोल लिखते हैं कि बातें अच्छी लग ही रही हैं, पर उसके साथ ही साथ जो गाने हैं उन गानों ने मनमोह लिया है। पंकज मोहड़ लिखते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति का जो आपने एग्जाम्पल दिया, जो बात कही, वो सच में बहुत अच्छी लगी, और ऐसा तो कांच की चीज़ें मेहमान आने पर इस्तेमाल करूँगा, लेकिन ऐसा पल आया नहीं। अच्छा, ओके। तो कई बार पंकज जी, सिर्फ कांच के बर्तनों की बात नहीं होती है, अगर शायद आपने भी गौर फरमाया होगा कि हम कुछ सेट, कुछ ग्लासेस या कोई भी कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना हम रखते हैं कि भाई कोई ख़ास मेहमान आएगा ना तब हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो सारे ख़ास मेहमान हम खुद क्यों नहीं बन जाते, खुद अपने आप को कभी एकदम अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं करते, बस यही एक बात है। वहीं अंजू अंधेरी से लिखती हैं कि भाई आपकी बातें भी एकदम 100% सच है। राजकुमार कुमार सुलेर जवड़की से उन्होंने नमस्कार भेजा है, और वहीं पंढरपुर से ओमकार काटकर ने भी नमस्कार लिखा है, और नामदेव किरवे लिखते हैं खूब छान। वहीं फिरोज सेगनपुरिया का भी मैसेज आया है, और उनके साथ साथ उनके व्हाट्सएप वर्ल्ड म्यूजिक ग्रुप के जो सारे मेंबर्स हैं वो भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, और आप सबका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, बातें न जाने हमें कितनी सारी पता होती हैं, कितनी बार हमने इन्हीं बातों को दोहराया होता है, पढ़ा होता है, कहा होता है, लेकिन फिर भी कई बार बस भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता। तो आज जब घर जाएं तो अपने किसी प्रियजन के साथ भले 10 मिनट ज़रूर बैठिएगा, माँ के हाथ की बनी चाय भी पी लीजिएगा, और पिता की कोई पुरानी कहानी या उनकी कोई पुरानी बात उनसे सुन लीजिएगा। बच्चों के साथ थोड़ी सी शरारत कर लेना, या फिर जीवन साथी के साथ दो पल मुस्कुरा कर बैठ जाना, इनमें से कोई भी और किसी का भी साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा, इसीलिए आज को, अभी को और अपने लोगों को पूरे दिल से जी लीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ें हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन अगर हमने उन्हें जी भर के जी लिया ना, तो वही उन्हीं पलों की मीठी यादें हमेशा हमारे साथ उम्र भर साथ रहेंगी।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी और आज बस अब घड़ी इशारा कर रही है कि कार्यक्रम लव यू जिंदगी को मैं समेटूं, अपनी बातों को मैं अब विराम दूं, पर चलने से पहले कुछ और भी जो मैसेजेस हैं वो भी आप तक पहुंचा देती हूं कि हमारे कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने बाकायदा अपनी हाजिरी जो है ना वो कार्यक्रम में दर्ज करवाई है। और पंकज महोड़ अमरावती से उनका मैसेज आ ही चुका है और उनकी बातें तो हमने आप तक पहुंचा ही दी। साथ ही साथ सोलापुर जिला से वारशी तालुका से भी हमारी ये लिसनर है जिन्होंने नाम तो नहीं लिखा है पर बस मैसेज ज़रूर भेजा है। संजय दर्शन लिखते हैं कि भाई चीज़ें बचाकर इसीलिए रखते हैं कि मेहमान हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। भाई मेहमान को जान से प्यारा समझिए, अतिथि देवो भव की हमारी एक पूरी परंपरा चली आ रही है जहाँ पर हम मेहमान को भी देवताओं के समान और उस सर्वोच्च शक्ति के रूप में देखते हैं और उन्हें देखना भी चाहिए। लेकिन हम अगर ये सोचें कि बस मेहमान आएंगे तभी हम जिएंगे, मेहमान आएंगे तभी हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, मेहमान आएंगे तभी हम अच्छे बर्तनों में खाएंगे, तो ये कहाँ की समझदारी है। संजय जी ज़रा ये भी तो बताइए भाई, मेहमान आ रहे हैं और उनके लिए सब कुछ

बढ़िया होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, लेकिन आप खुद भी तो बताइए कि आपके आसपास जो लोग हैं, जो घर परिवार के लोग हैं, वो भी तो उतने ही ज़रूरी हैं। और इसी बात पर एक और बात याद आ रही है दोस्तों, कि हम दुनिया वालों से, घर को छोड़ करके दुनिया वालों से न जाने कितने अच्छे से बर्ताव करते हैं, और जब घर आते हैं तो पूरी भड़ास, वो जो पूरे इमोशंस जो दबे होते हैं, जो गुस्सा दबा होता है, जो तकलीफ दे दबी होती है, वो हम अपने परिवार वालों के सामने ही आकर के पूरा उलट देते हैं। पर हम क्यों नहीं उनके बारे में सोचते हैं कि भाई हो सकता है उन्हें भी हमारी बात का बुरा लग सकता है ना, तो उनके बारे में हम क्यों नहीं सोचते? और फिर हम ये कहते हैं कि भाई परिवार वाले हैं, उनको तो समझना चाहिए, अब अगर हम परिवार के सामने ही नहीं ऐसे बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? तो ऐसा बोलना ही क्यों जो दूसरे के दिल को दुखा दे? जिस तरह से हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, क्यों नहीं सोचते हैं अपनों के बारे में? बस अब कार्यक्रम लव यू जिंदगी को समेटते हैं, पर चलने से पहले यही कहूंगी कि इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम समेट रही हूं कि आप हर पल को महसूस करेंगे, हर रिश्ते को समय देंगे और हर छोटी से छोटी खुशी का भी स्वागत करेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे और हर दिन पूरे दिल से कहेंगे लव यू जिंदगी।

0: कभी खट्टी मीठी तकरार,
1: जब तुम चाहो पास आते हो,
0: कभी बे इंतहा प्यार, कभी चुलबुली सी शरारत, तो कभी मासूमियत बेशुमार। ये है अनोखे रंगों वाला FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, दिल से दिल तक।

दोस्तों आपको बता दें कि ठीक 6:05 पर आप सुनेंगे हमारे नागपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार और मैं लौटूंगी अपने पिटारे के साथ ठीक 6:15 पर लेकर कार्यक्रम अंदाजे बयां। तो सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: दोस्तों नमस्कार, शाम के ठीक 6:15 का वक्त और आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम अंदाज़े बयां।

दोस्तों, शाम का ये वक्त और कार्यक्रम चल रहा है अंदाज़े बयां, ओनली ऑन एफएम रेनबो, जो है म्यूजिकली योर्स, और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता, लेकर अपना सुनहरा पिटारा। अर्ज किया है, ना साथ देता है ना आज़ाद करता है, ना साथ देता है ना आज़ाद करता है, बात वो अब मुझसे सबके बात करता है। पहले याद करता था वो वक्त निकाल लेता था, पहले याद करता था वो वक्त निकाल लेता था, अब वक्त निकालता है तो याद करता है, अब वक्त निकालता है तो याद करता है।

0: तक, सूफी से रॉक तक, कनेक्शन है अपना दिल से दिल तक। सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाज़े बयां अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ, और मिर्ज़ा गालिब का एक शेर अर्ज कर रही हूँ। मुझे मालूम था गालिब वो मेरा हो नहीं सकता, मुझे मालूम था गालिब वो मेरा हो नहीं सकता, मगर देखो मुझे फिर भी मोहब्बत हो गई। और कई बार जैसे होता है कि किसी एक शायर ने कोई कलाम लिखा, कोई शायरी लिखी, और उसके बाद आने वाले समय में दूसरा कोई शायर, दूसरा कोई कवि उसी शायरी पर अपना भी एक जवाब लिखता है। मिर्ज़ा गालिब के इस शेर पर जॉन ओलिया साहब ने लिखा था, वो कहता है कि सोच लेना था मोहब्बत से पहले, वो कहता है सोच लेना था मोहब्बत से पहले, उसे क्या पता सोच कर साजिश की जाती है मोहब्बत नहीं।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।

अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजों में दिल जले फिल्म का ये गीत ओनली ऑन एफएम रेनबो जो है म्यूजिकली योर्स। शाम के ठीक 6:44 का वक्त हो रहा है, यानी कि इट्स 6:44 एंड कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। सुन रहे हैं आप अंदाज़े बया अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ। जिंदगी अगर ख्वाब हुई तो, मौत अगर लाजवाब हुई तो, तुम्हें लगा मैं खामोश हूं, तुम्हें लगा मैं खामोश हूं, खामोशी मेरी आवाज हुई तो, मैं यहां सबसे नाराज हूं, जिंदगी मुझसे नाराज हुई तो। वो बोला मोहब्बत नहीं तुम्हें, वो बोला मोहब्बत नहीं तुम्हें, मैं बोला बेहिसाब हुई तो। मुस्कुरा रहा हूं तेरे सामने, ये आंख तेरे बाद रोई तो, मैं समझा हूं कि तुम आए हो, मैं समझा हूं कि तुम आए हो, लेकिन ये अगर फिर तेरी याद हुई तो। वो बोला कितना ही लिखा होगा, वो बोला कितना ही लिखा होगा, मैं बोला पूरी किताब हुई तो। तुम्हें ये बस शायरी लगी, तुम्हें ये बस शायरी लगी, लेकिन ये मेरे दिल की आग हुई तो।

दोस्तों, अगले कार्यक्रम हम तुम में आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं 8657661071 यानी कि 8657661071 इस नंबर पर मैसेज करके। और फिलहाल कार्यक्रम अंदाज़े बयां को समाप्त करते हैं इस गीत के साथ।

बता दें आपको कि ठीक 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और ठीक 7:10 पर शुरू करेंगे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हम तुम।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: दोस्तों नमस्कार, शाम के ठीक 7:10 का वक्त और आपके अपने musically yours FM Rainbow पर वक्त है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हम तुम का। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त समता और आज मेरे कंधों पर है ये जिम्मेदारी कि पूरी करूं आपकी फरमाइश।

फिलहाल तो मैं बस आप लोगों से यही कहूंगी कि अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत इस वक्त, तो बस तुरंत बिना सोचे समझे ज्यादा वक्त गवाए 8657661071 यानी कि 8657661071 इस नंबर पर कर दीजिए मैसेज और फिर देखिए गीत पहुंच जाएगा आप तक। फिलहाल अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाजों में लक्ष्य फिल्म का ये गीत जिसे हमने सुना राकेश माथुर की पसंद पर, और अब अगला गीत जो है वो आ रहा है चेतन कुमार की पसंद पर फिल्म केसरी से।

0: लेकर आते हैं हम जज्बातों के नए रंग।
1: मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी,
0: जो छू लेते हैं आपका मन। हर आरजे का है एक अलग ही रंग।
1: ओ रंग रे
0: क्योंकि यहाँ से हम लेकर आते हैं बातें दिल से, जो पहुँचती है आपके दिल तक, ओनली ऑन FM रेनबो।

दस्तक फिल्म का ये गीत विजेंद्र घटोल की पसंद पर और साथ ही साथ इस पसंद में और भी कुछ नाम शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने भी इस गीत को सुनना चाहा था। और अब कार्यक्रम हम तुम में हम बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं अगला गीत। और इस गीत को जिनकी पसंद पर हम सुनने वाले हैं ये बताऊंगी गीत के बाद।

अमित कुमार की आवाज़ में तेरी कसम फिल्म का ये गीत, जिसकी रिक्वेस्ट भेजी संजय दर्शन ने और साथ ही साथ ममता जायसवाल ने। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम तुम ओनली ऑन एफएम रेनबो, जो है म्यूजिकली योर्स, और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता। और अब थोड़ा वक्त है कि आप जहाँ कहीं भी बैठे हों थोड़ा थिरकने लगी है। सत्या फिल्म का ये गीत मीना जी और फिरोज सिगनपुरिया की

कपूर एंड सन्स फिल्म का ये गीत और पसंद ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति प्रहलाद भरत बंटी पबली वर्मा की।

वैसे दोस्तों ये गीत सिर्फ सुना रही हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। और ये गीत है सुशील यादव और रेनू यादव की पसंद पर, और इनकी पसंद आई है उदयपुर राजस्थान से। अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में ये गीत फिल्म खलनायक से।

शाम के ठीक 7:46 का वक्त और कार्यक्रम चल रहा है हम तुम अपने और मैं हूँ आपके साथ आपकी आज दोस्त समता और आज पूरी कर रही हूँ आप सभी की रिक्वेस्ट और अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुँचाने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8657661071 यानी कि 8657661071 इस नंबर पर। वैसे दोस्तों आप लोगों की भी जब फरमाइश पूरी होती है तो मुझे पता है कि आप लोगों के चेहरे पर भी एक मुस्कान खिलाती है, पर कई बार होता ऐसा भी है कि हम कुछ काम में बिज़ी हो रहे होते हैं या फिर ड्राइव कर रहे होते हैं कि हाथ फ्री नहीं होता कि मैसेज कर सकें, और बस आप रेडियो बाकायदा सुन रहे होते हैं, लेकिन अब अपनी पसंद पहुँचाएँ तो कैसे पहुँचाएँ। और ऐसे में किसी और की पसंद पर जब आपकी भी पसंद का गाना प्ले हो जाए तब वो जो खुशी है, और खुशी भी नहीं वो जो आनंद है, ओहो क्या बात है। क्योंकि कल शाम को जब मैं भी ट्रैवल कर रही थी और किसी काम में फंसी थी, लेकिन बाकायदा एफएम रेनबो जो है वो गाड़ी में चल रहा था, और इतने में जब ये हम तुम कार्यक्रम में एक हमारे लिसनर है उनकी पसंद पर जो गाना प्ले हुआ और मुझे लगा कि अरे ये गाना तो मेरा भी फेवरेट है, और तब लगता है कि सच में हम सभी कितने कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। फिलहाल अपनी बातों को देती हूँ मैं अल्पविराम और कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, और अब सुनाती हूँ आपको अगला गीत, और इस गीत के साथ ही साथ हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू महालक्ष्मी अय्यर, और उनके इस गीत की फरमाइश भेजी है दीपाली शिरोडकर, प्रकाश शिंदे और साथ ही साथ ओमकार काटकर ने पंढरपुर से।

महालक्ष्मी है ये अय्यर और राहत फतेह अली खां की आवाज़ों में झूम बराबर झूम फिल्म का ये गीत। और दोस्तों अब बता दूं कि बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जो आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने हमारा साथ दिया है। ये है मैसेज आया है विनी पटेल का, साथ ही साथ वेड़ापुर से दत्तात्रेय अड़त भी हमारे साथ बने रहे। और ये है रजनीकांत रघुनाथ पाटिल वाडवंड से, उल्लासनगर से हमें मैसेज किया कल्पना और राजू वारे ने, साथ ही साथ प्रमोद चिंचोलकर का भी मैसेज आया, सुशील यादव, रेणू यादव, राकेश माथुर और जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद भरत, बंटी पबली वर्मा ने भी मैसेज किया। मैसेज किया हमें नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा ने, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा का भी मैसेज हमें मिला। साथ ही मैसेज मिला गया बिहार से चेतन कुमार का और नूतन वर्वे ने भी हमें मैसेज किया है। और ये मैसेज आया है भूषण पाटिल का छत्रपति संभाजी नगर से, दीपा पालकर का भी मैसेज हमें मिला और साथ ही साथ उनकी फरमाइश भी हम तक आ चुकी है। दिग्दर्शन और कविता ने भी हमें मैसेज किया और इंदौर से हमें सुन रहे थे अजय साकरे, साथ ही साथ अरविंद कुलकर्णी, संजय दर्शन, मंगेश मात्रे, भारती और दुर्गेश नागनपुरे का भी मैसेज हमें मिला है। और मैसेज मिला हमें कांच

मार्ग से आरती का, साथ ही साथ दादर से बाबा का। और ये है हमारी लिसनर मेघा, और सोलापुर से भी हमें मैसेज, बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो मिले हैं। और अब मैं आप लोगों को दो बैक टू बैक गाने सुनवा रही हूँ, और फिलहाल इसी गीत के साथ पूरी होगी। यह है अरविंद कुलकर्णी और साथ ही साथ पंकज बहोड़ की पसंद, और जो आखिरी गीत होगा उस गीत में फरमाइश शामिल है दीपा पालकर और अजय साखरे की।

और दोस्तों इन्हीं दोनों गीतों के साथ अब दीजिए इजाजत अपनी आज दोस्त अमिता को इस वादे के साथ कि बहुत ही जल्द होगी हमारी अगली मुलाकात। फिलहाल हमारी अगली मुलाकात तक रखिए अपना और अपनों का अच्छी तरह से ध्यान।

Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours. Feel.

0: Supply over there with the song that was meant for Bonnie Tyler originally, and she told them to record it. She released it a couple of years later and it became a hit for her as well. Supply, of course, this became one of their biggest number ones of all time, thanks to Bonnie Tyler. Pay tribute to the legend who passed away this week at the age of 75. You're listening to Akashwani's Rainbow Channel on FM 107.1. Stay tuned right now for the news in Hindi at 8:45, followed by the news in English at 9 p.m. And we'll be back at 9:15 with absolutely fabulous music right here on the number one station in Amchi, Mumbai. That's Akashwani's FM Rainbow.
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
2: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
4: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और

0: सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहाँ 8436789 8491552 3714 और 8433452 0414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
3: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
1: ये समाचार हमारी

0: वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रुपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janaki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है. भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है. हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है. हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है. पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे.
1: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long.
2: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है. ये मेरा सौभाग्य है. मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ. साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था.
1: Defence Minister Rajnath Singh today said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. He said future wars may employ artificial intelligence and other emerging technologies, but they will ultimately be won by national resolve, courageous soldiers and capable military power. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Vishakhapatnam. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability. 15 Indian tourists were killed after a boat capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. The Embassy of India in Vietnam confirmed that the deceased include 13 men and 2 women. In a post on social media, the embassy shared the list of the victims, stating that the names were provided by the Vietnamese authorities. According to the embassy, 10 of the deceased were from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala. The boat was carrying 36 people, including 32 Indian tourists, 3 crew members and 1 attendant. 21 people, including 17 passengers and 4 crew members, were rescued and admitted to hospitals. 2 survivors remain in critical condition and are receiving intensive medical care. President Draupadi Murmu, Vice President C.P.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आसान भी नहीं है इश्क में सब कह जाना। दोस्त बहुत काफी है तुम्हारा होना सिर्फ। कई बार ऐसा लगता है किसी को देखकर, कुछ लोग होते हैं जिनका होना जिंदगी में रंग भर जाता है। उनको देखकर मानो मुश्किलों का हल मिल जाता है। उनके होने भर से ऐसा लगता है कि हर चुनौतियों को पार कर जाएंगे। ऐसा हम सफर, ऐसा दोस्त, ऐसा कोई साथ हो जो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है, आसान हो जाती है।

0: तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता, कहीं पे था ही नहीं, मुझ पे होकर गुजर गई दुनिया, मैं तेरी राह से हटा ही नहीं।
1: बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

0: छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। आप हैं FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक के सफर में, और दिल से दिल तक के सफर में मैं नविता हूँ आपके साथ।

जरा मोहतात होना चाहिए था, बगैर अशकों के रोना चाहिए था। अब उनको याद करके रो रहे हैं, बिछड़ते वक्त रोना चाहिए था।

रात जो तूने दीप बुझाए मेरे थे, ये शिकायत उनसे या खुद से कहना मुश्किल है। इश्क में दो लोग दूर ही कहाँ जाते हैं, सफर एक मंजिल एक, साथ गुजारा हर लम्हा एक ही तो होता है, एक ही सपने।

तुम्हें बस ये बताना चाहता हूं, मैं तुमसे क्या छुपाना चाहता हूं। कभी मुझसे भी कोई झूठ बोलो, मैं हाँ में हाँ मिलाना चाहता हूँ।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में। दर्द जब देरी आता है तो गिला किससे करे, खुद से भला क्या शिकायत। दर्द जब

और दोस्तों वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल से दिल मिलाते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से विकसित राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा तेज होगी। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट वियतनाम के फूक्वोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 भारतीयों की मौत हो गई, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का जलावतरण किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जन से गढ़ तक नामक नई संग्रहालय आधारित शिक्षण पहल का शुभारंभ किया है। दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 2023 में शुरू हुए मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस मनाएगा। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हो गई है। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द की गई और स्कूल बंद रहे और 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम की।

0: आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। 12:04:05 का समय समय हो चला है कार्यक्रम जीरो आर शो का। आज के शो में आपके साथ आपका दोस्त अतुल।

0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कोयल सी तेरी बोली
1: हाय हाय
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल 12:20 और 16 सेकंड का समय कार्यक्रम जीरो आर शो।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से विकसित राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा तेज होगी। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 भारतीयों की मौत हो गई, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जन से गण तक नामक नई संग्रहालय आधारित शिक्षण पहल का शुभारंभ किया है। दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 2023 में शुरू हुए मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस मनाएगा। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अलनीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हो गई है। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द की गईं और स्कूल बंद रहे और 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम की। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से विकसित राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा तेज होगी। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 भारतीयों की मौत हो गई है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का जलावतरण किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 2023 में शुरू हुए मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस मनाएगा। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हो गई है। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द की गईं और स्कूल बंद रहे। 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम की और चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीता। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। समय हो चला है 2:04 का और श्रोताओं ये समय है कार्यक्रम भुलाए ना बने का।
2: आरती मन मानती कहना क्यों नहीं मानती, पाठशाला में छुट्टी हो गई, बस्ता क्यों नहीं बांधती, बस्ता क्यों

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से विकसित राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा तेज होगी। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना कर 35,000 करोड़ रुपए तक

पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 भारतीयों की मौत हो गई जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का जलावतरण किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। पश्चिम बंगाल ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प के कार्यक्रम में भाग लेंगे। दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अलनीनो के कारण देश में मानसून की बारिश सामान्य से कम हो गई है। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द की गईं और स्कूल बंद रहे। 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम की। और चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुजोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीता। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेमो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से विकसित राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा तेज होगी। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट वियतनाम के फूकॉक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 भारतीयों की मौत हो गई जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मानसून की बारिश सामान्य से कम हो गई है। 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है और चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सारे कामा का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।